0: सर आपका लोन निकला है।
1: रख, रख रख वो।
2: याओ, I'm the dealer. ਗੱਲ ਕੀ
3: ਤੂੰ ਬੇਚਦਾ ਤੂੰ ਬੇਚ